दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आज बातें करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो हिंदी सिनेमा जगत में एक चमकता हुआ सितारा बनकर रह गया है। उसने ऐसी जगह पा ली है जिस पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। जब भी हिंदी सिनेमा जगत की बातें होती है, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, इन तीनों का जिक्र ज़रूर किया जाता है, पर सबसे याद किया जाता है देवानंद को। एक स्मार्ट चुलबुला चेहरा देवानंद।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म प्रेम पुजारी से। गाया था किशोर कुमार ने, लिखा था नीरज ने और संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने। दोस्तों, देवानंद के बारे में बातें कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। आपने ट्यून किया है 90.8। 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर में जन्मे थे देवानंद। धर्मदेव किशोरीमल आनंद उनका नाम था। काम की तलाश में ये लड़का मुंबई आया और मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम करने लगा, लेकिन हसरत तो एक्टर बनने की थी। ऑडिशन के लिए चुना गया, ऑडिशन तो हुआ पर इनके दांतों में जो गैप था वो आड़े आ गया, लेकिन बाद में यही गैप उनकी पहचान बन गया। शायद उसी की वजह से जो अलग सी मुस्कान इस लड़के ने पाई थी वो दर्शकों को पसंद आ गई। दोस्तों, नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। इस लड़के ने ऐसा नसीब पाया था कि उसकी बीसियों बातें स्टाइल बनके रह गई हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा याद रहते हैं ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के देवानंद। बाद में 40-50s के दशक में हरे राम हरे कृष्ण जैसी फिल्मों वाले देवानंद।

ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का एक भोला भाला फिल्मी नटखट चेहरा जिस गाने में नजर आता है, वही गीत आपने सुना संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज़ में। फिल्म थी सजा, संगीतकार थे एस डी बर्मन, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। शुरू में एक पतला ढीली पैंट पहनकर गले में स्कार्फ लटक कर जरा तेजी से जैसे भाग रहा है ऐसे चलते हुए नजर आते थे देवानंद। उसे भी स्टाइल ही कहा गया। ये स्टाइल भी नसीब वाली थी जो भाग गई लोगों को। एक स्टाइल ऐसी भी थी कि जब वो बोलते थे तो पॉज नहीं लेते थे। एक पत्रकार ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो वे बोले कि मुझे लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे तो मैं कश्मकश में रहता था कि पॉज लूँ या न लूँ, तो मैं एक ही सांस में सब बोल जाता था। बस यही स्टाइल बन गया था। इसी को तो नसीब कहते हैं जनाब।

दिल पुकारा में अभी आपने गीत सुना, 9 2 11 फिल्म से लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने और गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। दिल ने पुकारा में आज बातें कर रहे हैं सदाबहार देवानंद की। तो स्टाइलों की बात तो हो गई, असली ज़िंदगी में भी देवानंद एक सदाबहार व्यक्ति बने रहे। उनके प्रशंसकों ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहरी देशों के राष्ट्रपति से लेकर डाकू भी उनके दीवाने रह चुके हैं। एक रोमांटिक चेहरे का ये मालिक सारे फैंस के दिल को चुरा के ले जाता था। पर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ रोमांटिक भूमिकाएं नहीं की, बहुत सारी ऐसे भी किरदार थे जिन्होंने दर्शकों को रुलाया है। गाइड का राजू, काला पानी का सोल्जर, ज्वेल थीफ का डाकू और न जाने कितने किरदार। कितनी ही सफल फिल्में, सफल हीरोइनें, सफल डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया। खुद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के वह सह संस्थापक थे, निर्माता निर्देशक के रूप में भी सफल रह चुके। बतौर लेखक उन्होंने 2 फिल्मों की कहानी लिखी, प्यार का तराना, देश परदेस। निर्देशक के तौर पर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी फिल्मों के गीत बेहतरीन रहे, यादगार रहे।

दोस्तों, बॉलीवुड का ग्रेगरी पेक जिसे कहा गया है, उन्हीं को याद कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। जॉनी जिसका नाम है, गाइड जिसका काम था, वो ज्वेल थीप भी था, मुनीम जी था, प्रेम पुजारी था, बम्बई का बाबू था, सीआईडी भी था, और क्या क्या कहें इस देव के बारे में। दोस्तों, देव जैसे कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा हैं उनकी फिल्मों के ज़रिए, बातों के ज़रिए, सफलता के ज़रिए और गीतों के ज़रिए।

मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पांव पड़े दिन रात सुने फिर हाय सुने फिर हाय वो किसकी बात हो।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों आज बातें करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो हिंदी सिनेमा जगत में एक चमकता हुआ सितारा बनकर रह गया है। उसने ऐसी जगह पा ली है जिस पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। जब भी हिंदी सिनेमा जगत की बातें होती है, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, इन तीनों का जिक्र जरूर किया जाता है, पर सबसे याद किया जाता है देवानंद को। एक स्मार्ट चुलबुला चेहरा देवानंद।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म प्रेम पुजारी से, गाया था किशोर कुमार ने, लिखा था नीरज ने और संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने। दोस्तों देवानंद के बारे में बातें कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर में जन्मे थे देवानंद। धर्मदेव किशोरीमल आनंद उनका नाम था। काम की तलाश में ये लड़का मुंबई आया और मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम करने लगा, लेकिन हसरत तो एक्टर बनने की थी। ऑडिशन के लिए चुना गया, ऑडिशन तो हुआ पर इनके दांतों में जो गैप था वो आड़े आ गया, लेकिन बाद में यही गैप उनकी पहचान बन गया। शायद उसी की वजह से जो अलग सी मुस्कान इस लड़के ने पाई थी वो दर्शकों को पसंद आ गई। दोस्तों नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। इस लड़के ने ऐसा नसीब पाया था कि उसकी बीसियों बातें स्टाइल बनके रह गई हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा याद रहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के देवानंद। बाद में 40-50s के दशक में हरे राम हरे कृष्ण जैसी फिल्मों वाले देवानंद।

ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का एक भोला भाला फिल्मी नटखट चेहरा जिस गाने में नजर आता है वही गीत आपने सुना संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज में। फिल्म थी सजा। संगीतकार थे एस डी बर्मन, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। शुरू में एक पतला ढीली पैंट पहनकर गले में स्कार्फ लटक कर जरा तेजी से जैसे भाग रहा है ऐसे चलते हुए नजर आते थे देवानंद। उसे भी स्टाइल ही कहा गया। ये स्टाइल भी नसीब वाली थी जो भाग गई लोगों को। एक स्टाइल ऐसी भी थी कि जब वो बोलते थे तो पॉज नहीं लेते थे। एक पत्रकार ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो वे बोले कि मुझे लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे तो मैं कश्मकश में रहता था कि पॉज लूं या न लूं, तो मैं एक ही सांस में सब बोल जाता था। बस यही स्टाइल बन गया था। इसी को तो नसीब कहते हैं जनाब।

दिल ने पुकारा में अभी आपने गीत सुना, 9 2 11 फिल्म से लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने और गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। दिल ने पुकारा में आज बातें कर रहे हैं सदाबहार देवानंद की। तो स्टाइलों की बात तो हो गई, असली जिंदगी में भी देवानंद एक सदाबहार व्यक्ति बने रहे। उनके प्रशंसकों ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहरी देशों के राष्ट्रपति से लेकर डाकू भी उनके दीवाने रह चुके हैं। एक रोमांटिक चेहरे का ये मालिक सारे फैंस के दिल को चुरा के ले जाता था। पर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ रोमांटिक भूमिकाएं नहीं की, बहुत सारी ऐसे भी किरदार थे जिन्होंने दर्शकों को रुलाया है। गाइड का राजू, काला पानी का सोल्जर, ज्वेल थीफ का डाकू और न जाने कितने किरदार। कितनी ही सफल फिल्में, सफल हीरोइनें, सफल डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया। खुद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के वह सह संस्थापक थे, निर्माता निर्देशक के रूप में भी सफल रह चुके। बतौर लेखक उन्होंने 2 फिल्मों की कहानी लिखी, प्यार का तराना, देश परदेस। निर्देशक के तौर पर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी फिल्मों के गीत बेहतरीन रहे, यादगार रहे।

दोस्तों, बॉलीवुड का ग्रेगरी पेक जिसे कहा गया है, उन्हीं को याद कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। जॉनी जिसका नाम है, गाइड जिसका काम था, वो ज्वेल थीप भी था, मुनीम जी था, प्रेम पुजारी था, बंबई का बाबू था, सीआईडी भी था, और क्या क्या कहें इस देव के बारे में। दोस्तों, देव जैसे कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा हैं उनकी फिल्मों के जरिए, बातों के जरिए, सफलता के जरिए और गीतों के जरिए।